0: शरण माणी सी ते जेड़े राज भगते तू बैठा है ए गुरु नानक दा ही बख्शिया है।
1: जन्मत ही अजमत आत धारी
0: जिस दिन तो प्रगट हो गए सन उस दिन तो ही बहुत ही शक्ति वधाउणा कीती है, बहुत ही शक्ति विखाउणा कीती है।
1: सुपत शाम केर अफाण विस्तारी
0: एदा मैं सुनिया है कि एक वारी धुप्पे सुते सी धुप चढ़ आई सी ते स्फणियर सप ने अपने स्फण नूं फैलार करके शांजई कीती
1: महखन चरकै खेत उजारा।
0: पर ए भी सुनिया है कि मझां चारन जांदे सन एक दिन मझां खेतां विच छड के आप सौ गए सन, मझां ने सारा खेत उजाड़ दिता सी। फिर जिस तरफ तो ओ चौधरी चढ़ के आए सन जदो वेख्या ते सारे खेत हरे भरे सूके हरे किए खिन माहे जी।
1: खिन महे के हरे आवल सारा।
0: एदा छिन पल विच ही सारा माहौल बदल के रख दिंदे ने।
1: अन्न कमरे तक भी करे जवावन।
0: एदा उन्हां दे कोल बहुते आकर के जेड़े सिद्ध सन चौरासी सिद्ध गोरखनाथ।

एक दिन चलना दिलबरा क्यों मौतों डरिए। जदों राहगीरां ने गल आखी है ना, गर्जर सिंह गुस्से में आया, कहन लगा कि बोता सिया ये तरकार है साडे जीण दे, सानू कोई लख कह लवे, ये बाणा गुरु साहब का है, दुमाला गुरु साहब का है, ये सानू भीखी दस रहे है। बोता सिया कहन लगा कि गर्जर सिंह सबर खार थोड़ा जा, सबर जरूरी है, पेशेंस रख अपने। सिख का पहला कर्म है कि अपने मन के अंदर धीरज और सबर नू ग्रहण करना। जे धीरज नहीं सबर नहीं ना, जिदा कहिंदे हुंदे पंजाबी च लस्सी ते लड़ाई का जिन्ना मर्जी बधा लवो, कोई गल आखी है कौड़ा वचन तुसी मोहरे आख दो, इधरों एक ने आख्या उधर दूआ आख देगा, वह ज्यादा हो जाएगी लड़ाई बढ़ जाएगी। एक मैनू गल याद आई, घर के अंदर नौ ते सस का झगड़ा बड़ा रहा करे, जे सस कुछ आखे ना नौ मोहरे वध आख्या करे, जे नौ कुछ आखे तो सस होर वध आख्या करे। सस ने सोचा कि काम खराब आया, बीबिया आम करके साधा दे कोल बहुत जांदियां मत्था टेकन पे, बाबा जी घर च पता नहीं केड़ी कला आ गई, कलेश बड़ाया, बनदी नहीं, नौ चारे खुर चाके पैण नूं पैंदी आ, ना नहीं लैणा भी कौन है, चारे खुर कह देना ते समझण वाले ने समझ जाना। ते सारे कोल गई बीबी एक को, कहिंदी बाबा जी कृपा करो, कहिंदा बीबी घर काम तेरे सूत आजू, काम ठीक हो जाऊ मैं तेनू लैचिया दिना रुपया 5100 दे दी, अरदास करूंगा मंत्र पढ़ के लैचिया दे दवांगा। कहन लगी कि ठीक है, दे घर च लड़ाई खत्म हो जू, कहिंदी हां हो जू। उन्हें गीजे चो लैचिया कढ़िया, बीबी ने 5100 रुपया दिता, साध ने कड़े छोले बेचे सी पाहे बोझे च, वो लैचिया फड़ाइया। जदों कहिंदा नौ माड़ा जा बोलन लगी ना, इनू मूह च पा के पिछले पासे दंदा दे हौली हौली घुटना शुरू कर दई, जिदा जिदा नौ बोलूगी तो इन घुटी जाई, नौ की जबान बंद हो जानी। पांच सत दिन होए, जदों कोई गल तो तकरार होना ना, तो माता जी ने अंदर जाना, अंदरों लैची चकनी, बाबा जी का नाम लैना, मूह च पा के बहर आने के नौ दे मूहरे गेड़िया मारती रहना, तो लैची नू घुटी जाना। नौ कहिंदी भी काम बड़ा सूत खराब होया, इह तां बोलदी कुख नहीं, हार के नौ ही बोलणों हट गई, भाई बोलना ही कुछ नहीं, उधरों लैची कुटे, जे हुण बोलूगी तां लैची डिगणी सी बाहरले पासे। बूबने ने पहला ही कहा सी कि इहनूं घुट के रखी, जिन्ना घुटूंगी दंदां नूं ना उन्ना ही ठीक रहेगा काम। ते पातशाह महाराज कहिंदे संत मिले किस सुणीए, कहीए मिले असंत मस्ट कर रही है, कि गुरमुख प्यारा मिल जावे ना उसे चुप नहीं करना, उसे बोलना, मिले असंत ऐड़ा लग गया जिथे मस्त कर रही है, भाई जिहड़ा एवी अवाग आउणी मूंह रख जा बोली जावे ना उहदे मूहरे कुछ बोलना नहीं। जदों कोई संत मिलिया रब दे घर दी गल करन वाला, उहदे नाल विचारां दी सांझ पाउणी, ते गुरु दी गल तुहाडे हिरदे अंदर वसेगी। इधर बोता सिंह कहिंदा गर्जा सिंह कुछ सबर कर, कहिंदा ने हुण नहीं रहा नहीं जांदा, आपा हुकूमत ना मथा लाइए। वह कहिंदा कि मथा किवें लावांगे आपा दो जाने, कहिंदा फिक्र ना कर, मैनू मेरे गवाजां वाले ते माण है, आपा उहदे चरणां ते अरदास करके ना। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने कहा कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, आपा तो 1,25,000 है, दोनों जाने 2,50,000 हो गए, आपा तो इन्हां दीआं अड्डियां चुका देंगे। कहन लगा कि ठीक है, इन्होंने फिर स्कीम वरती, एक जेडे लोके बैठे सी कहिंदे कि ये आपां नूं आख रहे कि भीखी सिख है, लोके बैठे हुए आ, ये सिंह नहीं आ गए, आपां सिंह है, आपां मर्द हैं, आपां शेर हैं, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज के पुत्र हैं। फिर कहिंदा की करना, कहिंदा आजा बार आपां हुकूमत नूं दस दे असी आजाद, साडा दर घर आजाद, असी आजाद रहण वाले, लोके रहण वाले नहीं है असां। इन्होंने जरनैली सड़क के उपर ना नूर दीन की सरां दे कोल एक नाका ला लिया, जिन्हों आप कहने कि अजकल कह दीए कि टोल प्लाजा ला लिया। उत्थे एक दे हाथ दे विच मूठी सारी डांग फड़ी, दूजे दे हाथ दे विच श्री साहब है, कोई सैकल वाला आवे इन्हां नूं आवाज मार के कहण
ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੋਝੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੱਢਣੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਬੋਝੇ ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਡੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਖੋਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬੋਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੂਹਰਿਓ ਆਇਆ। ਗਰਜਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਹੱਲਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਲਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਸ਼ਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਲੋਤਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੱਥੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਆ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਓ। ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਵੇਂ ਕਰ, ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਵੀਂ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਕੀ ਸੀ? ਗਿਆਨੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ, ਰਸਤੇ ਚ ਖੜਾ ਆ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਅਸਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਬੂਨ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਿਆਨੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿਲਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਉਹ ਬੋਲ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੂਹੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੇਨਤੀ।

0: गुण संग्रह अवगण विकण आपे आप पछाण।
1: विकण है पाठ कस के करना, पोला जा विकना है नहीं कहना। गुण संग्रह अवगण विकण आपे आप पछाण।

अवर ना दाता सेवा लागे सेवड भागे जुग जुग एको जाता जात सत संजम कर्म कमावे बिन गुर गात नहीं पाई नानक तिसनो शब्द।

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू परवृत नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी

अस्थान दे युगां दी मनोहत, जैसे किसी थां ते कथा कीर्तन हो रहा है, ओ जगह सचयुग है, ओ जगह बैकुंठ है। कहो कबीर कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आए। जिथे सत्संग हो रहा है बैकुंठ है, जिथे सत्संग हो रहा है सचखंड है, जिथे सत्संग हो रहा है सतयुग है। एक अस्थान दे, पर तीसरी घटना जो है मानसिक मंडल दे, ये विज्ञानक है, सच्चाई है, एक तथ्य है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, मनुख दिया मानसिक अवस्थावान है। इक्को ही समय विच घर दे दस जिया देखा, कोई सतयुग विच जी रहा होगा, कोई त्रेते विच जी रहा होगा, कोई द्वापर विच जी रहा होगा, और कोई कलयुग विच जी रहा होगा। मनुख नू वेख के असी कह सकते हैं एक सतयुगी जीव है, और मनुख दी तर्ज जिंदगी व्यवहार आचार नू वेख के असी कह सकते हैं इसे मेरा ही कलयुगी जीव है। ये ठीक है सनातन मत देच भी और गुरमत दे अंदर भी, युगां दा शरीर रूप भी मन लिया गया है। जैसे कहानियां आउंदियां ने, कबीर नू कलयुग मिलिया, गुरु नानक नू कलयुग मिले, मरदाने नू कलयुग मिलिया, फलानी थां ते कलयुग प्रगट होया। कलयुग नू एक व्यक्ति मन लेना ये मिथ है, पर पुराना एक ढंग से बयान करन दा, जैसे बुराइयां नू ही शैतान आखिया जांदा है, पर इस्लाम दे शैतान दा एक वजूद मन लिया गया, उसका एक आकार मन लिया गया, शैतान नू एक व्यक्ति मन लिया गया। दरअसल शैतानियत शैतान इत बुराइयां इत जो अवगण है। इसी तरीके दे नाल देव बिरतियां पवित्र बिरतियां प्रकाशमई बिरतियां जिस दे अंदर चल दिया ने वही देवता, और जो अवगुण हारा है अचेत ते अंधकार विच जी रहा है वही राक्षस है। वास्तविक ये एक सच्चाई है, देवता होना राक्षस होना शैतान होना भगवान होना ये मनुख दे मन ते आधारित है। इक्को ही समय कोई शैतान हो सकता है, कोई भगवान दा रूप हो सकता है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है एक कोई व्यक्ति सवेरे ते सतयुग दे जी रहा सी, शाम नू कलयुग दे जी रहा, दोपहर नू त्रेते दे जी रहा सी, रात नू द्वापर दे जी रहा सी। यह मानसिक अवस्थावां ने किस तरह ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी ते आधारित इसनों मैं बयान करन लगा। नानक मेरे शरीर का एक रथ वाओ, जुग जुग फेर वटाइए, ज्ञानी बुझे ताए। युग युग दे समय समय दे ये जीवन चेतना शरीर वक वक धारण कर दी रही है, जीवन दे लक्ष्य बदल दे रहे ने, जीवन दे साधन बदल दे रहे ने। लक्ष्य बदल जाए, साधन बदल जान, युग बदल जान।

0: युग दी तब्दीली इस्ते खड़ी है कि मनुख दे जीवन दा लक्ष बदल गया, युग बदल गया, लक्ष दी प्राप्ति दे साधन बदल गए, युग बदल गया। समा ते लाजमी लगेगा, वक्त ते लाजमी लगेगा। इस वास्ते जिना जिना ने समय विच भी युगां दी गिनती की थी, लेकिन आधार से मनुख का मन ही बनाना पड़ेगा। ये ठीक है, मनुख दे मन नु बदल दें, लक्ष्य दे बदल दें, साधन दे बदल दें, समा ते लगता है, वक्त ते लगता है। तो जिना जिना ने समय दे आधार से युगां दी वंड कीती है, उन्हां दा दृष्टिकोण बैरूनी है, पर वास्तविक ते ए ही है कि बहुगिणती दे मनुख दे जीवन दा लक्ष्य जद बदल जांदा है, साधन लक्ष्य दी प्राप्ति दे बदल जांदे ने, युग बदल जांदा है। युगां दे अगर हुण गिणती करिए तो चलो उपर तो लईए प्रथम सतयुग। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे तां। कोई ज्ञानवान ही इसनू जानदा है कि हर समय जीवन दे लक्ष्य ते साधन बदल दे रहे ने। सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाओ। सतयुग दे जीवन दा लक्ष्य वास्तव की सी, सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाओ। अगे लक्ष्य धर्म सी, धर्म तो मुराद सच्चाई, धर्म तो मुराद परमात्मा, धर्म तो मुराद ईश्वर सच। जीवन दा लक्ष्य सच सी, प्राप्ति दा साधन संतोख सी, मनुख संतुष्ट सी। और संतुष्टि ऐसा रथ है, इस दे बैठ के मनुख सच दी प्राप्ति करता रहे है, धर्म दी प्राप्ति करता रहे। इसनु प्रथम समय विच नाप दिया, फिर समय दा गेर चलदा रहा चलदा रहा, आखिर बहुगिणती दे जीवन दा लक्ष्य बदल गया, साधन भी बदल गए। त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवाओ। जिंदगी दा लक्ष्य जोरावर होना, ताकतवर होना, शक्ति होनी चाहिए। बाहां दे बाहुबल इतना होवे जैसे हजार बावां दे बल होंदा है। ऐसे नाम भी ने प्राचीन महापुरुषां दे, सहन सर बाहु, हजारां बाहां वाला। असी किधरे किधरे देवी देवतावां दे चार चार हाथ बनाए ने, अठ अठ हाथ बनाए ने, दस दस हाथ बनाए ने, और किसे दे दस दस सिर भी बनाए ने, दह सिर रावण। ना प्राकृतिक रूप दे किसे दे दस सिर होंदे ने, ते ना ही दस हाथ होंदे ने। सिर दे सोच शक्ति आम मनुखा नालों ज्यादा होए, चेते शक्ति आम मनुखा नालों ज्यादा होए, कई गुणा ज्यादा होए। विचार शक्ति आम मनुखा नालों दस गुणा ज्यादा होए, तो आपे दहसुर हो गया। ते दो बावां दी ताकत इतनी होवे जैसे हजारां बावां, ते हजारां बावां उसदे अधीन होवन, तो फिर सहन सर बाहू ए बयान करन दे अपने ढंग ने, वरना एक शरीर दे हजार हाथ नहीं हो सके। अगर हजार हाथ ने तो शरीर भी पहाड़ जैसा होवेगा, अगर दस सिर ने तो शरीर भी हाथी नालों भी कई गुणा वड्डा होना चाहिए। नहीं, दस सिरां जैसी चेते शक्ति, दस सिरां जैसी सोच शक्ति, दस सिरां जैसी विचार शक्ति जिस दे अंदर सी, असी उसनों दह सिर आख्या, दसां सिरां वाला। और जे दे दो हथ हजारा हथां नूं काबू कर सकन, अपने अधीन कर सकन, उसनों असी सहन सर बाहु करके आख्या, बयान करन दे ढंग ने। जीवन दा लक्ष जद बन गया जोरावर होना, मेरे दो हत्थां विच बल हजारा हत्थां जैसा होवे। ताकत शक्ति जब जीवन दा लक्ष बन जाए तो मनुख अशांत हो जांदा। जीवन दे दो ही लक्ष हो सकदे ने, शांति या शक्ति। शांति प्राप्त करन दे साधन होर ने, शक्ति प्राप्त करन दे साधन होर ने, और बिल्कुल विपरीत ने। त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवा, तो फिर ताकत ते ताही हो सकती है शरीर दे जती होवे। और बार भी ताकत मनुख ता वधा सकदा है संजम नाल चलन वाला होवे, सोच के चलन वाला होवे। तो जीवन दा लक्ष्य जद ए बन जाए पहलवान ही होना है, तो फिर जत ही उसका साधन बनेगी। बहुगिणती दे जद जीवन दा लक्ष्य ए बन जाए तो फिर ओ त्रेता युग है। द्वापुर रथ तपे का सत अगे रखवाओ, इथे सत तो मुराद उच्चा आचरण इखलास, सत तो मुराद सच नहीं है। वास्तविक इथे सत दे अर्थ आचरणशील होना, आचारशील होना, सुंदर आचरण वाला। पर बिना तप तो ते नहीं हो सकता, ते तपश तप की इंद्रियां दा दमन, अखां नूं काबू दे च रखना है, कन्नां नूं काबू च रखना है, जबान नूं काबू दे च रखना है, हथ पैरां नूं काबू दे च रखना है, मन नूं काबू दे च करन दी कोशिश करनी है, ताकि जीवन दे सत प्रगट हो सके। कलयुग तो शुरू करिए ते द्वापुर दूजा पुर, और जिस युग दे असी जी रहे हैं, धन गुरु नानक देव जी महाराज इस दे बारे इन फरमान करदे ने, कलयुग रथ अगन का को अगे रथवा। जद कूड़ माया जीवन दा लक्ष्य बन जाए तो तृष्णा उसकी प्राप्ति दा साधन बनती है। तृष्णा लो ही नहीं तो फिर तरह तरह के पदार्थों की प्राप्ति किवें करेगा? संतुष्ट है तो प्राप्त कर भी नहीं सकता। तृष्णा झूठ नो प्राप्त करने का साधन बनती है, उपराला बनती है। कूड़ किसनो कहते ने? जो दिखाई भी देवे, प्रभावित भी करे, ते पकड़िए हथों निकल जाए। जगत स्थिर नहीं है, अस्थिर है, सब कुछ चलायमान है। इस वास्ते इसनु कह देता है कूड़ झूठ, कूड़ मैया कूड़ बीबी खप होए खार। धन गुरु नानक देव जी महाराज से कहने ने सब कुछ कूड़ ही कूड़ है। क्यों किस नाल की जय दोस्ती, सब जग चलनहार, किसनो पकड़िए सब कुछ चलायमान है। न इथे दिन टिके होया है, न इथे रात टिकी हुई है, न इथे बचपन टिके होया है, न इथे जवानी टिकी हुई है, न इथे बुढ़ेपा टिके होया है। दिन नहीं टिकया, रात नहीं टिकी, जीवन नहीं टिकया, तो फिर कुछ भी टिके होया नहीं है। सब कुछ चलायमान है। जो चल रहे होवे ते चलायमान होवे उसे नु कह देंदे ने चंचल। समस्त संसार चंचल है, पकड़न की कोशिश करांगे हथों निकल जाएगा। दिन नु पकड़न की कोशिश करिए गया, रात नु पकड़न की कोशिश करिए गई, इस तरह जवानी नु पकड़न की कोशिश करिए हथों निकल जाएगा। जीवन हथों निकल जाता है। जो हथों की पकड़ दिश ना आवे, जैसे पवन नु पकड़न की कोशिश करिए ते हथां दे बंद करिए, मुट्ठी दे बंद कर दें हवा निकल जाती, पवन गई। जो पकड़ दे चना आवे, चलायमान है, उसनु चंचल आख्या है, उनु कूड़ आख्या है। पर जीवन दा लक्ष्य कूड़ होवे, जीवन दी प्राप्ति लक्ष्य कूड़ होवे, बस ए कूड़ चाहिदा है, यही संसार चाहिदा है। तो फिर संसार अगर लक्ष्य है तो तृष्णा ही साधन बनेगी, लोभ ही साधन बनेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज से फरमान पे कर देने, वाकई ये युग लोभी युग है, बड़ा परबल लोभी युग है। हर समय जिसके अंदर देण की भावना होवे ते दे के खुश होंदा होवे, गुरबाणी कहिंदी है गुरमुख है। पर हर वक्त लैण की भावना होवे ते लै के खुशी मिलती होवे, बस उसे नु आखिया गया है लोभी। बड़ी कीमती पंक्ति है, दित्ते नालों लिता चंगा मनमुख एवें जानी। किस तरह जाणोगे मनमुख है, जिसकी सारी खुशी लैण दे खड़ी है, जद किधरे देना पै जाए औखा होंदा है, दुखी होंदा है, परेशान हो जाता है, पर जिथों किधरों लैणा पै जाए और मिले खुश होंदा है, प्रसन्न होंदा है। लैणा खुशी है, देना दुख है, ये लोभी दे लक्षण ने। हथों देके भला मनाए, देके खुशी आती है, देके प्रसन्नता आती है, और जिसनु दिता जाता है उसका भला भी मंगता है। ऐसी मनोवृत्तियां ने तो ऐसा जीव महान है। उसकी जिंदगी का लक्ष्य देन दे चाहे, पर जे लैन दे चाहे तो लोभी। अगर कूड़ झूठ पदार्थ संसार ही जीवन का लक्ष्य है तो प्राप्ति का साधन तृष्णा होगी। तृष्णालू का लक्ष्य कूड़ होता है, माया होती है, संसार होता है, पदार्थ होते हैं। और महाराज कहते हैं मनुखी दुनिया से जात मार के देखिए, नानक कूड़ रहा भरपूर। कूड़ ते व्यापक है और बड़े व्यापक पद्धर ते चल रहे हैं। इत्थे ते कोई किधरे सच बोल देवे ते हूं झूठ समझिया जाता है, पर झूठ बोले ते सच समझिया जाता है, क्योंकि व्यापक ओही है। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਿਆਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਭੀੜ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਭਗਤ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਲੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਭੀੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜੀਏ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭੀੜ ਆਖਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਤਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਅਨਿਆਇ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਇਸ ਭੀੜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਭੂਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੀੜ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਆਲਮ ਨੂੰ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੂਤਨੇ ਉਤਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਉਸਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਉਸਨੂੰ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਭੀੜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਧਨ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਲਕਸ਼ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਈਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ, ਗਰਭਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ। ਬਿਰਧ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਸਤਯੁੱਗ ਗਰਭਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ, द्वापर जवानी है, कल युग बुढ़ापा है, बुढ़ा युग है। अगर सच्चाई नु वेखना होवे बच्चे नालों, गर्भकाल दे बच्चे नालों, खिडौणिया नाल खेडदे होए बच्चे नालों और जवान नालों, बुढ़ापा इस वास्ते महान है कि उसके कोल जिंदगी दे तजर्बे आउंदे ने, उतार चढ़ाव का सारा बोध आउंदा है। शायद इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कलयुग नू महान आख दिता है। सतयुग त्रेता द्वापर बणीए, कलयुग उत्तम युगा माहे। ए युग उत्तम युग है, क्यों? स्याणा युग है। और ये गल ते मन्नी पर मन्नी है, इस युग दे जितनी स्याणप उजागर होई है, जैसे जैसे पिछे जाओगे उतने नहीं सी। ये जो चार युग ने गर्भकाल दी अवस्था, बचपना, जवानी ते बुढ़ेपा, इन्हां दे अपने अपने अवतार ने, उसनों गुरबाणी अपने ढंग नाल बयान कर दी है और इसनों वाकई सच्चाई दे रूप विच, हकीकत दे रूप विच असी देखिए ते समझण दी कोशिश करिए। चार युग मनुख दे जीवन दियां चार अवस्थावां, गर्भकाल दी अवस्था, बचपना, जवानी और बुढ़ेपा। सतयुग गर्भकाल दी अवस्था सी। गर्भकाल दा बच्चा मां दे स्वासा नाल स्वास लैंदा है, मां जो खांदी है उसकी ओही खुराक है, मां जो पींदी है बस उसका ओही पान है। स्वतंत्र रूप दे उसका खान पान नहीं है। सतयुग दे मनुख पहाड़ां दियां कंदरां थले या रुखां थले रहिंदा सी, प्रकृति जो दे रही सी फल फुल ओही खा लैंदा सी। अपनी तरफों कोई भोजन बनाना और उनू सवारना यह अजे मनुख ने नहीं सिखिया और लोड़ भी नहीं सी। अबोध सी, लेकिन एक विचारधारा भारत दे मनीष ने मनी है कि गर्भकाल दा जो बच्चा है वास्तविक उस हालत दे च है जिस हालत दे च एक योगी समाधि दे चाहुंदा है, एक ब्रह्म ज्ञानी समाधि दे चाहुंदा है। समाधि दे जो आनंद आउंदा है ओही आनंद उस कोल है, ओही रस उस कोल है, फिर जीवन भर उसे ही आनंद नूं ओ लभदा है। ये आनंद स्वभाव किस नूं प्रकृति ने ही प्रदान कीता है। निश्चिंत है, चिंता रिजक दी आउंदी है तो मां दी खुराक उसकी खुराक है, मां दा पीता होया पानी ओही उसकी प्यास बुझा रहे है, मां दे स्वासा नाल स्वास ले रहे है। इस बच्चे ते कोई समाज राज नहीं। निश्चिंत है, चिंता रिजक दी आउंदी है तो मां दी खुराक उसकी खुराक है, मां दा पीता होया पानी ओही उसकी प्यास बुझा रहे है, मां दे स्वासा नाल स्वास ले रहे है। इस बच्चे ते कोई समाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जिम्मेवारी नहीं है। सतयुगी जीव कल्ला तनहा जीण वाला पहाड़ां दियां कंदरां विच रैन बसेरा करन वाला, रुखां थले रात कटन वाला, प्राकृतिक रूप विच जीण वाला, कोई रिजक दी चिंता नहीं सी। इतनी वनस्पति, इतना कंद मूल, इतने फल फुल स्वभाविक उपलब्ध सन। ये जी रहा सी इस तरह जैसे गर्भकाल दा बच्चा जी रहा है। निश्चिंत सी, बेफिकर सी और मन विच संतोख सी, संतुष्टि सी। यही कारण है कि सतयुग दे कोई परबल अवतारी पुरुष नहीं आया। गर्भकाल दे बच्चे नो आखिर समझाण वास्ते, सिखाण वास्ते किस दी लोड़ है? भाव किसे दी भी लोड़ नहीं है। ओते उस अवस्था दे जी रहे है, जिस अवस्था बारे सारी सिखलाई दिती जाती है, उते स्वभाविक है उसके कोल मन उसका टिकिया होया है, आनंदमयी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक पहले पहरे रहण के वण जारिया मित्रा हुकम पाया गरबास उर्द तप अंतर करे वण जारिया मित्रा खसम से थी अरदास। भावे उल्टा है गर्व देच पर अरदास देच है, प्रार्थना देच है और नाम अभ्यास देच है। भाव नाम अभ्यास नाल जो अवस्था बन दी है, प्रार्थना जो आनंद बन दा है, वो उस दे कोल है। बच्चा उसे आनंद जी रहे है, उसे ही रस दे जो है जी रहे है। इस वास्ते कहिंदे ने सतयुग देच अवतार आया पर बोना, सतयुग तय माण्यो छल्यो बल बावन भायो, बावन अवतार बोना अवतार। हां कोई दाई, कोई डॉक्टर माड़ा मोटा देख के कुछ औषधि कुछ दवाई दे सकता है, लेकिन वास्तविक इस बच्चे नु कुछ भी लोड़ नहीं, किसी चीज की भी लोड़ नहीं। मनुख जी रहा सी प्रकृति दे प्राकृतिक ढंग न, खुला घूम रहा सी। कोई देश नहीं सी, कोई जात पात नहीं सी, कोई कबीला नहीं सी, कोई परिवार नहीं सी। आखिर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था दे भी कोई देश नहीं रह जाता, कोई परिवार नहीं रह जाता, कोई जात पात नहीं रह जाती। आखिर ब्रह्म ज्ञानी भी ते उस तरह ही विशालता दे स्वतंत्र होके जो है जीवदा है, ये जीवना स्वभाविक उस मनुख कोल सी जिसनु असी सतयुग कहिंदे आ ते सतयुगी जीव कहिंदे आ। जैसे बुढ़ा भी बचपन नु याद करदा है, किसे हद तक गर्भकाल दी अवस्था नु याद करदा है, हो बहो सतयुग मनुख नु बार बार याद आउंदा है। चाहे बाजार विच बैठा है, परिवार विच बैठा है, सत्संग विच बैठा है, महिमा सतयुग दी। क्यों? सतयुग दे जो स्वभाविक अवस्था सी ब्रह्म ज्ञानी दी, स्वभाविक प्राकृतिक रूप दे, उसनु हम ये प्राप्त करना चाहता है। इस वास्ते सतयुग दी याग है। दरअसल सतयुग दे अगर सतवादी सी, संतुष्ट सी, ये कोई इसकी अपनी उपलब्धि नहीं सी, अपनी मेहनत नहीं सी, प्राकृतिक सी। अगर बच्चे नु खुराक मिल रही है, पानी मिल रहा है, श्वास मिल रहे ने, गर्भकाल दे बच्चे दी इस विच कोई अपनी उपलब्धि नहीं, अपनी कोई मेहनत नहीं है, ये तो स्वाभाविक हो रहा है, ये तो प्राकृतिक हो रहा है। अगर उस वक्त दा मनुख धार्मिक सी तो प्राकृतिक सी, प्रकृति ने ही उसनु जो जीवन दिता वास्तविक वो धार्मिक सी और उस दे मनुख जी रहा सी सत दे संतोख दे। सतयुग रथ संतोख का धर्म बे रथवा, मर्यादा दे जी रहा सी, भुख लगी है ताई खांदा सी उंज नहीं, प्यास लगी है ताई पींदा सी उंज नहीं, नींद आई है ताई सौंदा सी उंज नहीं। बिल्कुल धार्मिक ढंग नाल जी रहा सी, भुख नहीं है तो नहीं खांदा सी, और जब खांदा भी सी तो घट खांदा सी। फल तोड़न वास्ते जगह जगह फल लभण वास्ते ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਤਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੋ ਸਵਸਥ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰਭਕਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਉਸਤੇ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਬੋਧ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਗਰਭਕਾਲ ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਕਬੀਲੇ ਬਣੇ, ਕੁਟੁੰਬ ਬਣੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਣੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣੇ, ਕਬੀਲੇ ਬਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਣੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗੇ ਰਦਵਾਓ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਬੀਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਿਸਤਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੌਰ ਦਾ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਟਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ। ਤੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਔਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼। ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੰਜੋਇਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੀਨਾ ਝਪਟੀਆਂ ਆਮ ਸਨ, ਤੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜੈਸੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਖੋਆ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਖੋਆ ਖਾਈ। ਅਤੇ ਖੋਆ ਖਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਦ ਜੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਏ ਉਸ ਵਿੱਚ श्री राम प्राइमरी स्कूल दे उस्ताद कहे जा सकते ने, और प्राइमरी स्कूल दे बच्चियां नो पढ़ाण दा ढंग, खास करके नर्सरी दे बच्चियां नो पढ़ाण दा एक ढंग, समझाण दा एक ढंग श्री राम ने आरंभ किया। द्वापर जवान हो गया मनुख, हुण इस नूं उठण बैठना सिखाण दी लोड़ नहीं है, हुण इस नूं बोलण दी तमीज सिखाण दी लोड़ नहीं है, जवान हो गए। अगर जवान बच्चे नूं भी कहना पए तो इंज बैठ, इंज चल, इंज बोल, तो शायद अजे वह जवान नहीं होया। जवान इन्हां जिम्मेवारियां नूं समझदा है, बालग हो गया है। बालग होया है उस जमाने आए श्री कृष्ण, और कृष्ण जी नूं कहिंदन लीला परशोत्तम श्री कृष्ण। जवान उम्र वाकई एक लीला है, एक लीला है, एक रास लीला है। जीवन दी शक्ति बड़ी है, ताकत बड़ी है, उछाल बड़ा है, हुण दे च उबाल बड़ा है। द्वापर रथ तपे का सत अगे रथवा, ये उछलिया होया हुण, ये उछली हुई शक्ति अनर्थ नूं जन्म ना देवे। तो हुण कुदरती गल है, उच्चा आचरण सिखाना ही सी। सत अगे रथवा, जब जीवन दा लक्ष्य होवे उच्चा इखलाक, ते प्राप्ति दा साधन बन जाए तप द्वापर। ये विचारधारा देना है श्री कृष्ण। मर्यादा जबरन थोपे नहीं जा सकती। कृष्ण दा संदेश मनुख जी सके ढंग नाल, मर्यादा सहायक होवे, मर्यादा मारू ना होवे। जिथे जिथे मर्यादा करके मनुखता मरे, मनुख मरे, उथे उथे मर्यादा नूं एक पासे कर दिता जाए, मनुख नूं मारन दी लोड़ नहीं। जैसे देखदे हां मर्यादा दी पालना करदे आया श्री राम ने गर्भवती सीता नूं अपने घरों कढ दिता, मर्यादा दी पालना करदे आया शंभूक नाम दे जीवर दे कन्ना विच शीशा पिघला के पा दिता, क्योंकि वेद मंत्र सुनना शूदर लई गुनाह सी। मर्यादा बन चुकी सी बहु गिणती विच, अगर प्रजा कुछ कहेगी तो राजे नूं मनना ही पएगा। तो सीता नूं घरों कढ़ना पया, जदके निर्दोष है, पवित्र है, सतवादी है, निर्दोष नूं भी मर्यादा सजा दे देवे, यह श्री कृष्ण नूं काबले कबूल नहीं सी। जीवन नूं लीला दी तरह लो, मर्यादा बोझ ना बने, सिर दा भार ना बने कि सिर नूं दबा के रख दे। तो इस तरह यह द्वापर युग एक जवान युग। कॉलेज दे प्रोफेसर आए श्री कृष्ण, किसी विशेष यूनिफॉर्म दी लोड़ नहीं और वर्दी दी लोड़ नहीं, किसी खास मर्यादा दी लोड़ नहीं। जीवन एक लीला है, जीवन एक तमाशा है, और लीला दी तरह जीवो, पर लीला भ्रष्ट ना कर देवे। जीवन दा लक्ष्य उच्चा इखलाक बनाओ, उच्चा आचरण बनाओ, पर जीवन नू फिर भी रास लीला दी तरह लेना। कल युग एक बुढ़ा युग, बिरध अवस्था, बुढ़े तोते नू पढ़ाण लई आए धन गुरु नानक। मर्यादा सिर दा बोझ होवे तलांजलि दे दो, पर लीला भ्रष्ट कर देवे। और वाकई लीला ने भ्रष्ट कर दिता अगां चल के, मंदिर देवदासियां दे अखाड़े बन गए। मंदिर दे मांस ते शराब आम चलन लग पिया, और जो थोड़े रूप अजे भी मौजूद है, काली दा मंदिर, कुमुखिया देवी दा मंदिर, उजैन दे भैरव काल दा मंदिर, उजैन दे भैरव काल दे मंदिर विच अज भी शराब दा प्रसाद है और शराब चढ़ाई जाती है। कुमुखिया देवी गुवाहाटी दा मंदिर, काली दा मंदिर कलकत्ते दा दिन भर मास दा प्रसाद है और सवेरे सवेरे संडे बकरे वढ़ के खून दे तिलक नाल ही द्वार खुलते हैं। देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदिर, धर्म दे नाते वैश्याले बन गए मंदिर, धर्म दे नाते शराब कबाब दे अखाड़े बन गए मंदिर। उंगल भी नहीं उठ सकती सी क्योंकि सब कुछ धर्म दे नाते होया। राम दे मंदिर काम दे मंदिर बन गए, सदाचार दे मंदिर दुराचार दे मंदिर बन गए। ईश्वर नाम इबादत और उच्चे इखलाक दी थां ते दुराचार आ गया। विदेशियां दे मुंह दे च भी पानी आया, देश दी सारी दौलत, देश दा हुसन सब मंदरां विच सी। सब कुछ नूं छड़ के वो मंदिर ही लुटते रहे और मंदरां दे चों उन्हां नूं सोने दियां मूर्तियां, हीरे जवाहरात प्राप्त होए। देवदासियां दे रूप विच हिंदुस्तान दी असमत प्राप्त होई। इसे नूं ही बन के वो अपने मुल्कां नूं गवन करते रहे और इस तरह ये देश भ्रष्ट होंदा रहा और कमजोर होंदा रहा। तो सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। जब जुल्म होण लग पे और ये जुल्म होना सी हमला आवरां दी तरफों, जावरां दी तरफों, जरवाणियां दी तरफों और होना ही सी। जिंदगी वाकई एक रास लीला है पर मर्यादा ना रही। गुरु नानक दा जमाना आया, आपने लीला नू मर्यादा दिती, मर्यादा नू लीला दिती। गुरुद्वारे विच भी राग आए, संगीत आए पर मर्यादा दे, पदार्थ आए लंगर दे रूप दे पर मर्यादा दे, धन संपदा आई गुरुद्वारियां दे मर्यादा दे रूप दे। पर मर्यादा सिर दा बोझ ना होवे, राग दी धुन कीर्तन दे राही, संगीत दी धुन कीर्तन दे राही, ताके जीवन देच रस बनिया रवे और रस मर्यादा देच रवे। जैसे पानी दो किनारियां दे बंधन दे चले, जगत दी जीवां दी प्यास बुझांदा होया वो वगदी हुई धारा सागर तक पहुंचती है, पर दो किनारियां दे बंधन तोड़ देवे तो खेतियां डुब के बर्बाद होंदियां ने। सुख दी थां ते उस वगदी हुई धारा तो दुख मिलन लग पैंदा है। वो वगदी हुई धारा बर्बादियां नूं जन्म देंदी है। जीवन दी ए धारा सुख वंडदी होई, सुख लैंदी होई अपना जीवन लक्ष्य पूरा करे, परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचे। ये दो किनारियां दे बंधन दे चले और वो दो किनारे गुरु नानक ने बनाए, संतोख ते दया। धौल धर्म दया का पूत, संतोख था रखया जनसोत, अपने विच संतुष्टि ते दूसरे ते दया। ए उपदेश ए संदेश धन गुरु नानक देव जी महाराज दा वाकई ए उपलब्धि ते ओही है जो गर्भकाल दे बच्चे दी सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुख दी दुनिया तो जात पात हटा दिती, मजहब हटा दिता, वर्ण बेख हटा दिते, आश्रमां दा बोझ हटा दिता, भाषा दी वितकरे भी हटा दिते, मुलुक दी तंग दिली भी हटा दिती, सरबत दे भला मनन मंगण दी जाच सिखाई और आख्या सरबत दा भला मंगो, सारा संसार थोड़ा मुलुक है, थोड़ा मुलुक केवल थोड़ा मुलुक नहीं, सारा संसार ही थोड़ा मुलुक है और थोड़े मुलुक दे बंदे ही केवल थोड़े बंदे नहीं, सारा संसार साड़ा भाईचारा है। ऐसा उपदेश संदेश कल युग दे इस अवतारी पुरुष ने जगत दी झोली दे पाया। जैसे बुढ़ा त्रिशनालू होंदा है ते सियाणा भी बड़ा होंदा है, जिंदगी दे बहुते उतार चढ़ा देखण करके उन्हों झूठ बोलना भी आ जाता है और झूठ उसका चलता भी है। उम्र का तकाजा देख के बुजुर्ग है उसकी हर गल नूं अगले सही मन लेंदे ने बुढ़ापे करके, जबकि सही नहीं आती। तो यह एक प्रभाव है इस बुढ़े युग का, झूठ से व्यापक है, तृष्णा से व्यापक है। एक गर्भकाल के बच्चे की तृष्णा होगी, एक खिडौणिया नाल खेड़दे बच्चे दे अंदर की तृष्णा होगी। हाँ, जवान दे अंदर हो सकती है और बुढ़े दे अंदर कई गुणा ज्यादा हो सकती है। ये तृष्णालु युग, ये झूठा युग और ये बहुत स्याणा युग। इसनों गुरु नानक ने आखिया तू सिख है, सीखना है अजय, तू कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि बुढ़े न सब तो वड्डा माण यह आता है मैं सब कुछ जानता, इस जवान नूं की पता है, इस बच्चे नूं की पता है। वाकई एक बिरध के सामने जवान ते बच्चा अनजान ने, पर वाकई भगवान के सामने एक बुढ़ा भी अनजान है, सच के सामने एक बुढ़ा भी अनजान है। लिहाजा एहसास कराया तू सिख है, तेरे अंदर ये भाव पैदा होवे मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। इस भाव तो शिक्षा दीक्षा आरंभ की थी गुरु नानक ने, पर शिक्षा दीक्षा बोझ ना बने गा के शिक्षा दी। रबाब दी धुन नाल अपने दिल दियां तरबां मिलाईयां, रब्बी संगीत नू जन्म दिता और आपने इस ढंग नाल समझाना शुरू किया। आलम कहिंदे ने गुरु नानक ने योग साधना नहीं की थी, गुरु नानक ने जल धारा नहीं की थी, गुरु नानक ने प्राणायाम नहीं किए, गुरु नानक ने धोने नहीं तपाए, गुरु नानक ने वर्त नहीं रखे, गुरु नानक दा तीर्थां दे रटन दे कोई विश्वास नहीं, गुरु नानक ने केवल प्रभु दा गीत गाया है, गाण दे च विश्वास है। पर इतनी एकाग्रता नाल गाया, इतने रस विभोर होके गाया, इतने प्राणा नाल गाया कि गावना ही जप बन गया, गावना ही तप बन गया, गावना ही जोग बन गया, गावना ही प्रभु दा रोग बन गया, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। कीर्तन गुरु घर दे प्रभु प्राप्ति दा मुख वसीला बन गया, सिर ते बोझ ना बने प्रभु दा दर्श गाउंदे होया प्राप्त करिए। अगर परमात्मा आनंद है ते उसदे दर तक पहुंचण दा वसीला भी रस होवे, आनंद होवे, खेड़ा होवे, खुशी होवे, तो इस तरह रबाब दी धुन ते वक्त दा राग, वक्त दी रागनी गा गा के आप जगत नूं शिक्षा देंदे रहे, दीक्षा देंदे रहे और आपने मनुख की दुनिया चों जात पात नूं एक पासे कर दिता, वर्ण वंड नूं भी एक पासे कर दिता। मनुख केवल मनुख है, जन्म तो कोई धार्मिक नहीं, जीवन तो धार्मिक होवेगा, जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं, हाँ जीवन तो ब्राह्मण हो सकता है, जन्म तो किसी नूं शूदर ना आखो कोई शूदर नहीं, जीवन तो शूदर हो सकता है। और इस तरीके की शिक्षा दीक्षा मनुख की झोली दे पाई, जात पात दे सारे वितकरे हटा दिते और आखिया सिर्फ जोत नाल जुड़ो जात नाल नहीं, एक पासे रखो जात नूं जोत नाल जुड़ो। शरीर सारिया दे अलग अलग ने, असी देखते हैं एक शरीर का मास दूजे शरीर दे फिट करना बड़ा औखा है, क्योंकि हर शरीर अलग अलग है। मन भी अलग अलग ने, किधरे किधरे कोई दो मन एक हो जाते हैं, दो मनुखां दी विचारधारा किधरे एक हो जाती है, सारे संसार दी विचारधारा भी एक नहीं हो सकती। हर एक दा तन अलग अलग है, हर एक दा मन अलग अलग है, पर सारिया दी आत्मा तो एक ही है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हर एक दे अंदर आत्मा वेखो वो एक है, आपका संदेश ते उपदेश भी एक है, सारे एक ने, सारे एक दे विच ने, सारिया दा मालिक एक है। तो जात अलग अलग नहीं हो सकती, मजहब अलग अलग नहीं हो सकते, सारिया दा वर्ण धर्म वेख एक ही है और वो परमात्मा दा स्वरूप, परमात्मा दा स्वरूप जैसा सानू मिले है उसे रूप अपने आप नू जो है रखो और अपने अंदर ये भाव रखो कि सीखना है, मैं अजे भी सीखना है, मरदे दम तक सीखना है। अगर ऐसा भाव अंदर बनया रहे तो मरदे दम तक उसकी पात्रता बननी रहती है और परमात्मा दियां बख्शिशा उन्हों मरदे दम तक प्राप्त होंदिया रहिंदिया ने। चार युगां दी विचारधारा गुरबाणी नु मुख रख के तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे समक्ष भेंट कीती है।
1: मैं तुहानू एक बेनती करांगा मेरे वीरो, जिहड़े तुसी बैठे हो इस मुल्क विच धर्म कमाण दी पूरी आजादी, जे तुसी ट्रक चलांदे हो, तुसी टैक्सी चलांदे हो, थोड़ा जिहा दृढ़ता करके तुसी देखो भी मां तुरदिया कहिंदी पुत वेखी केस मत्था चुम्या, भैण तारो उहनू मिले। उत्थे लिखदे ने हर एक दी कहड़ी भैण जी दी इच्छा नहीं कि मेरे भरा दा घर वसे, उहदे बच्चे खून अगे। सच्ची मुची वह भैन वीर नू मिली तो उन्हें शब्द कहे जेड़े, कह लगे तू उदास ना होई वीर नू क्या, कह लगे मैं उदास नहीं हुंदा, तू चला जाएगा वीरा, पर जिन्नी देर तक मां ते मैं जिउंदियां हाँ तेरे घर विच सिंगां दा चुल्हा कदी बंद नहीं होवेगा। ये रोटी भी पकेगी, ये दाल भी बनेगी, ये कपड़े भी जाणगे। इथों पूले पिंड तो भाई साहब नूं लै के अगला पड़ा कीता पढ़ाणा पिंड। ये वैसे अजकल पाकिस्तान विच जी, क्योंकि पूला सरहद उत्ते अजकल मैं कहा पाकिस्तान। पढ़ाणे पिंड ये भी पिंड हिंदू मुसलमाना दा सी। इत्थे जदों नंबरदार दे कोल टिके जिहड़ी पंचायती थां जिहड़ी हुंदी, पिंड वालियां नूं पता लग गया भी भाई तारू सिंह नूं पकड़ के लै चले। याद रखियो तुसीं बंदे दा सिख दा करैक्टर देखो, अपने पिंड दे बंदे दा हुंदे ही। चलो उस पिंड दे विच फिर नौजवान धर्मशाला च गुरुद्वारे इकट्ठे होए, छेवी पातशाह उत्थे उन्हां कहा एक काम करो, एक किन्ने कु बंदे ने भला जिहड़े लैण आए ने, गिनती दे ने, इहनां सारिआं नूं खत्म करके तारू सिंह नूं आपां छड़ा लैणा। भाई तारू सिंह आपां छड़ावांगे। एक बजुर्ग भी गुरुद्वारे पहुंच गया, उहने कहा भाई नौजवानों तुसीं जज्बात विचों, पर जिन्हों छड़ाना चाहते हो फौजी दस्ता मारना उन्हों पुछते लीए। वह बजुर्ग फिर भाई तारू सिंह दे कोल गया, बजे सन भाई साहब, कहन लगा भी सिंह जी, भाई साहब नू अदब दिता कि इतों के नौजवान फैसला किया भी असी फौजी दस्ता खत्म कर देंगे, तुहानू छड़ाना है जो मर्जी होवे। अगो हस के कहने सिख परोपकारी हुंदा है, मैनू कल्ले नू छड़ा लोगे कल नू सारा पिंड मार देंगे। कहिंदे ने असीं की सेवा करिए, कहन लगे मैं शहीद होण चलिया, शहीदी भागा ना मिलदी, मैं शहीद होण चलिया। एक काम करियो, ये मेरे घर का तवा बंद करना चाहते ने, तुसीं तवे की थां ते लोहा बना दिया जी, ये साडे घर दे देगे बंद करने चाहते ने, तुसीं वड्डियां देगां चाड़ दिया जी। जे तुसी सिंघां दी सेवा करोगे जुझारवां दी, ये असली सेवा मेरी होवेगी। इत्थों भाई साहब नूं फिर लाहौर लै गए। मैं आप नूं बेनती करां जी, जखरीए दी कचहरी च पेश कीता, भाई साहब ने जाके फतेह गजाई। हुण वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सुण के तां औरंगजेब दे प्राण उड गए सन। ये फतेह आम दी नहीं, इहनूं कदी ना भुल्लियो सिंघो, ये फतेह गुरु गोबिंद सिंह दी है। साडा पुराना इतिहास कहिंदा है, गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सन जिहड़ा सिख नूं सिख सामने फतेह बुलाएगा उहदे वल मेरा मूँह होया करेगा। तो उहनूं आपां घट्टो घट देखीए। इस तरह भाई साहब जी नूं कहा गया वी तूं बागियां नूं रोटी देना, क्या मैं तेरा हाला भरना, मैं खेती करना, अपनी वाही करना, मैं कदी कोई पाप नहीं किया, कदी कोई जुर्म नहीं किया। उहनां कहा तूं रोटियां खवाना, वह कहिंदा ये मेरा धर्म है ते मैं अपने धर्म ते अपनी कौम की सेवा वास्ते सब कुछ ही कुर्बान करने तैयार। उन्हें कहा भी देख तू सोना किन्ना, सियाना किन्ना, इस्लाम धारण कर। वह कहिंदा है भाई साहब ने कहा मेरी सिखा ने अरदास, ये भी याद में रखे जो तुरन लगे संगत नूं क्या पढ़ाने, मेरी अरदास करो कि मेरी सिक्खी कैसा ना निभे। उन्हें कहा मैं तो गुरु के चरणा च अरदास करके आया, तू डोलन की गल कह रहा है, मेरी सिक्खी कैसा ना निभे। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: राष्ट्रपति
1: दे प्रसाद छत्ती ही अमृत खाहे
0: जिस ठाकुर को रख मन माहे
1: दे प्रसाद सुगंधित तन लावहे
0: जिसको समृत परमगत पावे
1: दे प्रसाद बसे सुख मंदर
0: चाहते आये सदा मन अंदर
1: दे प्रसाद गृह संग सुख बसना
0: आठ पहर सिमरोत सरसना
1: दे प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा ते आये ते हमन जोग
1: दे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहे
0: इसे त्याकत अवर लुभावे
1: दे प्रसाद सुख सेज सोई जय
0: मन आठ पहर ताका जस का विजय
1: दे प्रसाद तुल सब को मान
0: मुक्ता को जस रसन बखान
1: दे प्रसाद तेरो रहता धर्म
0: मन सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म
1: रब जी जप्त दरगाह मान पावहे
0: नानक पत से ती कर जावे
1: दे प्रसाद अरो कंचन देही
0: निबला बहुत सलाम स्नेही
1: दे प्रसाद तेरा होला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: दे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
1: दे प्रसाद तुझ को न पहुंचे
0: मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे
1: दे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
0: नानक ताकी भगत करे
1: दे प्रसाद अपूखन पहरीजे
0: मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे
1: दे प्रसाद असवर सवारी
0: मन तिस प्रभु को कभो न बिसारी
1: दे प्रसाद बाग मिलख तना
0: राग प्रय प्रभ अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत सहते आई
1: इसे ध्याय जो एक लख है
0: यहाँ उहां नानक तेरी रख है
1: दे प्रसाद करहे पुन बहुदान
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: दे प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: इस प्रभ को सास सास तारी
1: दे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सुप्रभ सिमरो सदा अनूप
1: दे प्रसाद तेरी नीति जात
0: सुप्रभ सिमर सदा दिन रात
1: दे प्रसाद तेरी पत रहै
0: गुर प्रसाद नानक जस कह
1: दे प्रसाद सुनहि कर्ण नाद
0: दे प्रसाद पेखै विस्माद
1: दे प्रसाद बोलहि अमृत रसना
0: दे प्रसाद सुख सहजे बसना
1: दे प्रसाद हस्त कर चलहि
0: दे प्रसाद संपूर्ण फल है
1: दे प्रसाद परम गत पावहि
0: दे प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रभु त्याग बरकत लग हो
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: दे प्रसाद तू प्रकट संसार
0: जिस प्रभु को मूल न मनो विसार
1: दे प्रसाद तेरा प्रताप
0: दे मन मूड तू ताको जाप
1: दे प्रसाद तेरे कार्य पूरे
0: जिसे जान मन सदा हरूरे
1: दे प्रसाद तू पावे हैं साच
0: दे मन मेरे तू तास्यो राज
1: दे प्रसाद सब की गत होए
0: नानक जाप जपै जप सोए
1: आप जपाई जपै सो नाउ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभु कृपा ते होए प्रकाश
0: प्रभु दया ते कमल विगास
1: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु दया ते मतूतन होए
1: सर्व निधान प्रभु तेरी माया
0: आपो कछु न किन्हु लया
1: जत जत लाभ होते तत लगे हैं हर नाथ
0: नानक इनके कछु न हाथ श्लोक
1: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह समुखता होए
0: सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा राष्ट्रपति
1: साध का संग मुख उजल होत
0: साध संग बल सगली खोत
1: साध का संग मिटे अभिमान
0: साध का संग प्रकट सुज्ञान
1: साध का संग बुझे प्रभ नीरा
0: साध संग सब होत नबेरा
1: साध का संग पाए नाम रतन
0: साध का संग एको ऊपर जतन
1: साध की महिमा परने कौन प्राणी
0: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी
1: साध का संग अगोचर मिले
0: साध का संग सदा प्रफुल्ल
1: साध का संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध का संग मनोहर बैन
1: साध का संग न कथूं पावे
0: साध संग अस्तित्व मन पावे
1: साध के संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु के संग महापुनीत
1: साध संग किस्सो नि बैर
0: साध के संग न बीगा पैर
1: साध के संग नाही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग नाही हौ ताप
0: साध के संग तो जैसा व्याप
1: आपे जाने साध पटाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कब हूं पावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लह
0: साधु के संग अजर सह
1: साध के संग बसे थान ऊंचे
0: साधु के संग महल पहुंचे
1: साध का संग दृढ़ है सब धर्म
0: साध का संग केवल पार ब्रह्म
1: साध का संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु के कुर्बान
1: साध का संग सब कुल उधार है
0: साध संग साधन बीत कुटम निस्तार है
1: साधु का संग सो धन पावे
0: जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध का संग सो पासुर देवा
1: साधु का संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध का संग सर्व थान गम
0: नानक साध का संग सगल जनम
1: साध का संग नहीं कष्ट काल
0: दर्शन भेट तो होत निहाल
1: साध का संग कुलूकत हरै
0: साध का संग नरक पर हरै
1: साध का संग इहां उहां सुहेला
0: साध संग मिश्रित हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरथा जावे
1: पार ब्रह्म साध रित बसे
0: नानक कुदरे साध सुन रसै
1: साध के संग सुनो हर नाम
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न वंते बिसरे
0: साध संग सर परमेश्वर है
1: साध के संग लगे प्रभु मीठा
0: साधु के संग घड़घड़ दीठा
1: साध संग भई आज्ञाकारी
0: साध संगत भई हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध भेटे संजोग
1: साध की महिमा भेद न जाने हैं
0: जित्ता सुनते तब बखियाने
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर
0: साध की उपमा रही भरपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत
0: साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा ऊंचते ऊंची
0: साध की शोभा मूचते मूची
1: साध की शोभा साध बनाई
0: नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक
1: मन साचा मुख साचा सोई
0: अवर न पेखै एकस बिन कोए
1: नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए
0: अष्टपदी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमलै लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीर एक
0: ज्यों बसदा को खुदै को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाओ
0: नानक ज्यो पाप का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जिन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को परबल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और धारै जो अंतर नाम सर्व में पेखै भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कात्रिया रूप न पेखै नेत्र
0: साध के टैल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू के निंदा
0: सबते जाने आपस को मंदा
1: और प्रसाद विखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टरै
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: मिशन की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वैने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचै
0: केवल भगत कीर्तन संग रचै
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावै
0: नानको वैष्णो परम गत पावै
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन ते बिन सह सगला भ्रम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवै
0: इस भगवती की मत उत्तम होवै
1: भगवंत की टहल करै नित नीत
0: मन तन अर्पै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावै
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवै
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवै
1: हर की कथा हृदय बसावै
0: सो पंडित फिर जोन न आवै
1: वेद पुराण सिमरत बूझै मूल
0: सुख मैं जाने अस्तूर
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान
0: जो वरना मैं जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावै जन कोए
1: कर कृपा अंतर उरतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का यो खुद नाम
0: ल्यान रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कितै न पाईऐ धर्म
0: नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगाह परवान
1: अपने दास को आप कृपा करै
0: जिस दास को सब सोची पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हितावै
0: जीवन मुक्त सो कहावै
1: ऐसा हरक तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नाही वियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिकाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो वरताए साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाऊ
0: जित जित घर रखे तैसा तरना
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई पन होग
1: असरे आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पए निहाल स ਸਲੋਕ
1: ਉਸਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਦਿਅਨਕ ਪਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਪ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬੀਰ ਕੇ ਸਰੋਤੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰਹੋਤੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵ ਵਿਚਾਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭਿਗ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰਮਾ ਹੈ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤੇ ਤਿਤ ਲਗਣਾ
0: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬ੍ਰਿਕ ਨਿਪਜਾਏ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀ ਸੂਰ ਨਖਤਰ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸ਼ਿਰ ਛਤਰ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮ ਸਾਤਕ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤਿ ਅਰ ਸ਼ਾਸਤ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਇਹ ਚਿਰ ਜੀਵੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕੇ ਨਿਰਪ ਸਾਚ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁ ਕਰਮ ਰਿਕਾਚ
1: ਸਾਥੇ ਨੇਰਾ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵੈ ਮਰ ਹੈ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਸਹੀ ਖਾਹੇ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲ ਥਕ ਪਾਹੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਇਹ ਧਨਵੰਤ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾ ਚਿੰਤ
1: ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬਹਿ ਰਾਗੀ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਖ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ
0: ਆਤਮ ਮਹਿ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਸ
0: ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ
0: ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ
1: ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
0: ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ
0: ਕਈ ਜਗ ਕੀ ਨੋ ਵਿਸਥਾਰ
1: ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ
1: ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ
0: ਜਿਨ ਹੋ ਵਤਿਆ ਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਦੇਤੇ
0: ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਇੱਕੋ ਨਿਤਰੇ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵ ਹੈ
0: ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ
0: ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਰੀ
0: ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ
1: ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਨ ਜਲ ਥਲ ਮਈ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ
1: ਜਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਨਹਾਰਾ
0: ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ
1: ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ
0: ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ
1: ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਹੁਕਮੇ ਐਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ
1: ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਮਨ ਉਗਤ ਪਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰੈ
0: ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ
1: ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ
0: ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
1: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ
0: ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰਨ ਆਵੈ
1: ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ
1: ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਿਛਲੇ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ
1: ਅਨਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ
0: ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ
1: ਭਰਮੇ ਭੂਲੈ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵੈ
0: ਨਮਕ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰਿਆਵੈ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ
0: ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ
1: ਛਿਨਵੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ
0: ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
1: ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ
0: ਜਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ
0: ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਗਦੀਸ਼
1: ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ
0: ਕਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ
1: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਥ
0: ਕਲ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ
1: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨ ਥੀ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਹੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੈ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਕੂਬ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਹੂੰ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਹੂੰ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਹੂੰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
1: ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤੇ ਵਹੀ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਪੀਠ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ
0: ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮੇ ਪਰਮੀਆ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ
0: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਵੈ ਨ ਜਾਵੈ
1: ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ
1: ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੌਰ ਨ ਆਵੈ
1: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼
1: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਬਸੈ ਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ
0: ਜੋ ਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ
1: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ
1: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ
0: ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नकपति होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: हर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नानक की है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंत होए कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: पर भीतरता का होए विनाश
1: सत्य आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना बदा आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरण पावे सगले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: किसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताके निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इस को सुख नहीं कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना अनक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुखन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: जो कुछ पीनो सो अपना रंग
0: तब ते दूर सब हूं कै संग
1: दूजा देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न पिनसै आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशै समझे आप
0: आपे रचिया सब कै साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: कोसते पिन कहो किश होए
0: हाथ नंतर एकै सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कटकट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन हार जा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत हो ही मलीन
0: संत के दुखन शोभा दे ही
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग नंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खिन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित्र
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिल लाए
0: जो जल बे हुन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बुआर तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तुर ही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न त्रिष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्यावो सास ग्रास
1: सब कछ वरते तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राई
0: एक ਕਾਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਔਰ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਮੈਨੂੰ ਭੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਹ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਸੇਤਲ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤਿਓ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਧਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਪਸੰਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਾਥ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਕਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਨੈ ਕਿਸ ਜਨ ਮੈਂ ਨੈ ਕਿਸ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਪਣ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗ ਤਰਚ ਥਾ ਬਿਉ ਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਬਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਈ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरहु गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग को तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर लेहु भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का एह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल एह रतन
1: सुनत कमाप्त होत उदहार
0: आप त्रै लोकै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजै
1: रखे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिनकै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर भय सबरीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: काल जंजाल बिकाते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक रवहि खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्तत करहो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सो होत निधान
1: सर्व इच्छा तां की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सकल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए फल तिस जन कै मुख भनी
0: गुरु नानक नाम बचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोए
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत कै मन बसराम
1: ओट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरण तां का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत तां की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सब ते ऊच तां की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुख ते धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: नानक हरे के हरे।
1: श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडा अंडू जेरी जुत पुजा खानी सेत जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबना जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता चिंता कर।

लख ने किन चंगियाईया लख पुना प्रवाण लख तप उपर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में है छुट है प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण दिन करता करना किया लिखिया आवन जान नानक मती।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय

0: ला पर गड्डी लदिए पर ये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डी खात पर ये है जेते बरस पर ये जेते मास पर ये जेते यार जा पर ये जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: काल पूर्ण वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों बेदाल जे को रुति हुरत होए नानक पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैविच खुम चढ़ाइए सरु पतन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोए।
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ पद कर नीच।

ओडिशा में दयाल कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

0: मत पिटे बे मत पिटे अन साडा पिटे तन पिटे फेट करे मन झूठे चुरी करे
1: नानक सच ते आई है।

पौरिया पिहकरणा की कलप हित धारिय देख किता अपना तर्क चिप की सारिय जो आ

होड़ी चक्कर लेके चक्रे चले खस में पाए हुरमत तिसनो अगलियो वजो पी दूना खाए खस में करे बराबरी फिर गर्द अंदर पाए वजह गवाया गला मोहे मोहे पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस गहिया शाबाश नानक हुकम ना चले नाल खसम।

आपे भांडे साजन आपे पूरे इक नी दुद्ध समाई अग चुले बयान चढ़े इक ने हाली पैस वाली गुपुरान खड़े तिना सुवारे नानी।

अकाल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म गुरु ग्रंथ जी माने हो जो प्रभु को मिले हो चाहे।

नामे को स्वामी बिठल ऐसा दर्शन प्यासी दिन सरात चितवा आनंद ननीत खोल कपट गौर मेलिया नानकार संग मीत सो कहा टल गौर से सहज सुबह दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसम दी मोर हर सौ कुर सौ चटी है तो दठे सचे पात मन जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पात सा सिर सा जिस पास बैठया सोई है सब

दास पुरब सदा दशहरा गौर ध्यान साचा थान तीरथ दास पुरब सदा दशहरा हा नाम हर का सदा जाचाओ।

मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई
Mire,
Good.

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्ति अजनि सैभं गुरु प्रसाद असमहला पहला वार श्लोका नाल श्लोक की महले पहले के लिखे कुंडे सराज की तुणी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरी अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की कर तुम लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे

0: विस्माद् नाद विस्माद् वेद विस्माद् जीव विस्माद् भेद विस्माद् रूप विस्माद् रंग विस्माद् आगे फिर जंत विस्माद् पौन विस्माद् पाणी विस्माद् अग्नि के डेविडाण विस्माद् धरती विस्माद् खाणी विस्माद् साध लगे प्राणी विस्माद् संयोग विस्माद् वियोग विस्माद् भूख विस्माद् भोग विस्माद् सिफत विस्माद् सला विस्माद् जड़ विस्माद् रा विस्माद् नेड़े विस्माद् दूर विस्माद् देखे हाजरा दूर वेख विना रहा विस्माद् नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पौ सुखसार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्वयाकार कुदरत वेद पुराण कुदरत सर्व विचार

सतगुरु विचार रखे उनकर प्रगटा सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोक्ष पाया उत्तम एक विचार है जिन सच्चे से उचित लाया जग जीवन दाता।

चित्त संजम दुख जाए पौड़ी सेवक की संतो कई जिन सचो सच ते आया निबंद पैर रखियो कर सुकृत धर्म कमाया नी दुनिया थोड़े बंदना।

0: परम सच्चा निसान पौड़ी
1: सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया जिसको दे तिस मिले सच तादिन सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कह दे सच वसाया सच न जानी मन भी गर्म गवाया।

कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंड कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ व्यापार कूड़ मिया कूड़ बीबी का पोए कार कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती समझ तरनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक गुरु खाने बेनती तो बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।

तुमरि कृपा मह सुख कनेर कोय न जान तुमरा ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरा सूतर तार तुम ते हो सो तुमरी गात मेत तुम ही जानी नानक दास सदा

जैसे दर्पण माहे बदन परवानी बस कटा कट लीप न छिप बंधन मुक्त जात न दिस

अजे बिन पूपत, राम नाम सर तऊ न पूजे, छोड़ छोड़ रे पखंडी मन, कपट न कीजे खर का नाम नितय नित दीजे। गंगा जो गोदावर जाइये, कुंभ जो केदारा नाइये, गोमती सहस गौ दान कीजे, हजारा गावा दा दान कर दे तू गोमती दे कंडे। ए भी नदी महाराज कहने आत्म जो नरमाइल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे। अस दान गज दान सेजा नारी भूम दान, ऐसो दान नितो नित कीजे, घोड़िया दा दान कर, गवा दा दान कर, इस्त्री दा दान कर। पर सच्चे पातशाह कहने सिमरन दे तुल कुछ भी नहीं।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Goodell Singh Bathur Dairy Lekki and a Behtareen Investment Opportunity near South Surrey, White Rock, close to the border with a combination of home and business. Invest karo 8 acres at the 100,000 square feet the greenhouse nursery business with and be your own boss. The Hatti Ati Tohatti family li Sunera Mokka Jive which nursery the Nal 5 bedroom house totally remodeled with Inkron outdoor pool, retail shop, warehouse, private suite at the Hurpe Pahot Kuch. Aaj hi sampark karo Goodell Singh Bathur at 604-351-5.
2: राजन मैंगोज अते इंडियन मैंगोज हुण फ्रूटी कैना दीआं सारीआं लोकेशन्स ते अवेलेबल हन। इस हफ्ते दे स्पेशल हन 25 जून तो 1 जुलाई तक। लार्ज चेरीज लवो 3.48 नूं पाउंड, 4 किलो राजन मैंगोज 16.99 दा बॉक्स अते 10 पाउंड स्नो बॉय रोस्टेड पोटैटोज 2.98 दा बैग। फ्रूटी कैना विशेज यू हैप्पी कैनेडा।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्व पावने मम पावनं सर्व कर्तव्ये ममं कर्ता